0: जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस।
1: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
2: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी हिंदी उर्दू या फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो या फिर फोन कर लो 4039036757।
1: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स।
3: ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣੋ।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਾਟਾ, ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਆ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਐਟ YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਇਨਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8257600983 ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
5: सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब यारी पता, मैं आपको होस्ट जलाल आपकी खिदमत हाजिर। आप सब सुन रहे हैं देख रहे हैं कॉफी जलाल ऑन रेडियो सुर संगम 94.7 FM। आज ये मैनेजर का दिन है तो आज जो है कॉफी जलाल के सेगमेंट की टर्न है और आज जो हमारे स्पॉटलाइट में आज का जो अपना सेगमेंट का नाम है वो है KWJ स्पॉटलाइट। तो आज भी जो स्पॉटलाइट में आज बहुत ही सुपर डुपर हमारे फ्रेंड्स मौजूद हैं लाइव इन स्टूडियो। इनका बहुत ही अच्छा इवेंट होने जा रहा है, वो क्या है, कब है, किस तरह आप जो है हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इतना बता दूं कि इट्स फ्री फॉर द होल फैमिली। तो आपने जो है डेट वगैरह टाइम वगैरह आप जो है नोट कर लीजिएगा ताकि यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग फैमिली डे इवेंट। तो एक बार फिर से 8:06 हो गए, इंशाल्लाह मेरा आपका साथ रहेगा शाम के 9 बजे तक का। तो वी आर लाइव ऑन फेसबुक एज वेल। अगर आप जो है देखना चाहते हैं कि आज हमारे गेस्ट कौन है, आप उनको सुनेंगे भी देख भी सकेंगे, सो यू जस्ट हैव टू गो ऑन माई फेसबुक लुक और जो सर्च फॉर जलाल स्माइल लाड़क और जो है आज का शो आप जो है देख सकते हैं लाइव एज वी स्पीक। सो सबसे पहले माई गेस्ट मोहम्मद पाशी जी। मोहम्मद पाशा कैसे हैं भाई, आप अपना कह रहे थे?
6: मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह।
5: थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन।
6: थैंक्स फॉर हैविंग अस।
5: या यू वेलकम, यू वेलकम। और आपके साथ आपकी वाइफ मौजूद है माशाल्लाह।
7: अस्सलाम वालेकुम,
5: कैसी हैं आप?
7: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा नाम रुबाब पाशा।
5: जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन।
7: थैंक यू।
5: यू नो बिफोर वी टॉक अबाउट द इवेंट मोहम्मद भाई, यू नो लेट्स गिव अस योर इंट्रो के आप क्या करते हैं, आपका ये ऑर्गेनाइजेशन से क्या ताल्लुक है?
6: जी तो मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ
5: माशाल्लाह।
6: तो मैं यहाँ पर कोई मुझे 28 साल हो गए।
5: ओह नाइस।
6: कैलगरी में तो
5: जी
6: काफी टाइम से हूँ मैं यहाँ पर और जॉब कर रहा हूँ, फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरी
5: जी।
6: और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका पूरा नाम है ऑल स्पोर्ट्स अल्बर्टा फाउंडेशन
5: जी।
6: ये जो है हम 8 साल हो गए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है।
5: 8 साल हो गए,
6: 8 साल हो गए,
5: जैसे पिछले साल की बात हो। वो मैं मुझे भी याद है डॉक्टर, ओह सॉरी टू कट यू ऑफ, डॉक्टर अब्दुल रहमान मुझे मिले तो दावत रेस्टोरेंट में
6: जी,
5: उन्होंने कहा कि हमने ये स्टार्ट किए हैं और ये आपसे मुलाकात हुई उधर ये आई थिंक ओह माय गॉड 8 साल माशाल्लाह जी।
6: तो ये बेसिकली डॉक्टर अब्दुल रहमान जो हैं इसके फाउंडर हैं
5: जी
6: इस ऑर्गेनाइजेशन के। उन्होंने जो हमारे कम्युनिटी में जो इश्यूज थे, चैलेंजेस हैं यूथ के साथ, उसको ओवरकम करने के लिए उसके और हेल्प करने के लिए उनके ख्याल ये आया कि हम जो ऐसी एक्टिविटीज करें, हेल्दी एक्टिविटीज जिसमें हम यूथ को एंगेज करें
5: जी,
6: बजाय इसके कि वो गलत चीज़ों में पड़ें और उनको हम इस इसके तरफ अट्रैक्ट करें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सब अट्रैक्ट होते हैं और खासतौर पर बच्चों में जो है चाहे वो सॉकर हो चाहे बास्केटबॉल क्रिकेट, तो इसीलिए हमने इसका नाम, बल्कि उन्होंने सोचा था आसाफ ऑल स्पोर्ट्स अल्बर्टा फाउंडेशन। इसमें हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा स्पोर्ट्स जो हैं हम इसमें एक्टिविटीज करें। तो उसमें कोई हमारे 26 से ज्यादा क्लब हैं, हर क्लब अपने तौर पर ऑपरेट करता है और स्पोर्ट्स को चलाता है
5: जी।
6: तो उसमें मेनली फोकस हमारा यूथ है, लेकिन साथ साथ हम जो है एडर

0: सीनियर्स और विमेन के लिए भी काम कर रहे हैं, और साथ में हमारा ये एक नया जो सेगमेंट हमने स्टार्ट किया पिछले 4-5 साल हो गए, स्पेशल नीड्स किड्स का है, वो आपको रुबाब उसके बारे में
1: जी।
0: तो ओवरऑल ऑल स्पोर्ट्स अल्बर्टा फाउंडेशन जो है ये हेल्दी एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अराउंड द ईयर जो है हमारा ये होता रहता है, बहुत से ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम इसको फ्री रखें। बहुत से हमारी क्लासेस राउंड द ईयर चलती हैं जो कि फ्री हैं, जैसे मार्शल आर्ट्स की क्लास है, बैडमिंटन और इस तरह के डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं जो हम फ्री रखते हैं
1: जी।
0: और अगर जो इसके हम चार्ज भी करते हैं बहुत ही सब्सिडाइज रेट में करते हैं, जो कि आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगे, जैसे सॉकर हो गए, उसमें काफी हमारे कम्युनिटी के बच्चे जो स्टार्ट करते हैं और फिर वो एक्सेल करते हैं उसके अंदर, उन्होंने काफी अच्छा फिर स्कूल में और अच्छे लेवल पे फिर उन्होंने एक्टिविटी में किया। तो बेसिक मकसद यही है कि कम्युनिटी को हेल्दी एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स में इंगेज रखा जाए, ताकि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड होता है वो आपको हेल्प करता है एक्सेल करने में डिफरेंट शोबों में। तो ये हमारा बेसिक मकसद है और ये हम कोशिश कर रहे हैं 8 साल से,
1: और स्पेशली आफ्टर पैनमिक इसकी बहुत जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: बहुत जरूरत। जी
2: जी, पहले बता चुकी, मेरा नाम रुबाब है और मैं बाय प्रोफेशन में कॉर्पोरेट रिस्क के डिपार्टमेंट में हूँ, रिस्क मैनेजमेंट में मेरा काम है। जब से पाशा ने स्टार्ट किया था वॉलंटियरिंग, ऑल स्पोर्ट अल्बर्टा फाउंडेशन में इनके साथ काम कर रही हूँ, और फिर अभी मैं जो वाइस प्रेसिडेंट हूँ वुमेन्स के जो भी प्रोग्राम और स्पोर्ट्स होते हैं और स्पेशल किट्स के भी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी डायरेक्टर हूँ, उसको लीड कर रही हूँ।
1: नाइस। यू नो ऑन अ सेम नोट, मैंने आई थिंक कल ही मैंने देखा, परसों देखा मैंने कि जो पाकिस्तान की जो वुमेन्स की जो सॉकर टीम बनी है तो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आवर कम्युनिटी है, तो आई थिंक इट्स वेरी, मुझे पता, मुझे खैर एक दो दिन पहले न्यूज मिले, मतलब वाओ दिस सो नाइस टू सी, या सॉकर की है वुमेन्स की जो सॉकर टीम है, सो नो आई थिंक दिस इज ग्रेट। तो ये महोदय आपके ये जो इवेंट है माशाल्लाह 4-5-6-7 आप जो करवाते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग होते हैं, तो उसका तो फिर हर स्पोर्ट का एक ही डायरेक्टर है, ऐसा कुछ है?
0: ऐसा ही है बिल्कुल, हमारे कोई 25-26 क्लब हैं और हर क्लब अपने उसमें उनकी अपनी मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें डायरेक्टर्स होते हैं और मैनेजर्स, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको मैनेज करते हैं, जो भी उनके स्पोर्ट्स आउटडोर इनडोर होते हैं
1: जी
0: करते हैं, और वो हमारे आसाफ के अम्ब्रेला के अंदर आते हैं।
1: Nice.
0: और कोशिश करते हैं कि ज्यादा जितने भी, क्योंकि स्पोर्ट्स डिफरेंट इंटरेस्ट है लोगों का, किसी को टेबल टेनिस पसंद है तो
1: Yes.
0: कोई जो है, इवन हमारे यहाँ जो है सीनियर्स के जैसे कैरम बोर्ड और इस तरह के
1: टूर्नामेंट,
0: औरतों का हमने लूडो टूर्नामेंट भी हमने करवाया हुआ,
1: लूडो
0: टूर्नामेंट, वो बल्कि एनुअल इवेंट हमारा बन गया, उसको भी हमें 4 साल से हम करवा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्ट है। तो इस तरह के जो भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, कोई भी ऐसी चीज या ऐसा स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसमें उनका इंटरेस्ट हो
1: जी,
0: और उसमें हम उनको एंगेज कर सकें, तो वो हमारी कोशिश होती है।
1: चलो, वेरी वेरी गुड। तो यू नो आप भी स्पेशली वुमेन्स, यू नो आई थिंक बाहर से बहुत से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कैलगरी मूव हो रहे हैं, सो डू यू सी के अपना बहुत सी फीमेल आर जो है कमिंग अप इन डिफरेंट स्पोर्ट्स?
2: जी हाँ, पहले जब स्टार्ट किया था और फिर लेडीज को स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज करना, मैं आज से 5-6 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो बहुत चैलेंजेस होते थे। लाइक जब हमारा बैडमिंटन का ग्रुप स्टार्ट हुआ था उस वक्त मुश्किल से 5-6 लड़कियां आ रही होती थी, और बड़ा वो करना पड़ता था, इनकरेज करना पड़ता था, और हर गेम में मुझे होना पड़ता था कि मेरा नाम देख के दूसरे लोग फिर अपना नाम लिखवाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम पे आ गए हैं कि मैं उसको वहां जाती भी नहीं हूँ, और वो पूरी हमारी जो लिस्ट है फुल हो जाती है। हमारे जो स्पोर्ट्स की डायरेक्टर हैं लेडीज की, वो उजाला वकार है, वो हैंडल कर रही हैं उनके साथ, हमारी डिफरेंट और भी हमारी एडमिन की हैं, हुमा हैं और रफत हैं और मोना हैं, वो सब हेल्प कर रही हैं मिलके। लेकिन अब मुझे मतलब जाना भी नहीं पड़ता कि मैं जाऊं और मेरा नाम देख के लोग आए, अब खुद सब अपना नाम लिखाती हैं। सब बिग अचीवमेंट फॉर मी कि जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रही थी पिछले 5 साल से कि नहीं बी एक्टिव, हेल्दी रहो, घर से बाहर निकलो, अपने आप को मेंटली हैप्पी रखोगे तो भी आप घर में भी अच्छे से चला सकोगे ना। तो अब मुझे मतलब मुझे फील होता है कि वो काफी हद तक अचीव हुआ है मुझे।
1: Nice.
2: अब मैं इतना स्ट्रगल नहीं करती, अब लोग खुद आ रहे होते हैं।
1: आई थिंक जो यू नो एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी मेहनत थी वो भी रंग ला रही। यस, यू आर लिसनिंग एंड वाचिंग कॉफी जलाल ऑन रेडियो सुसंग 94.7 FM। आज जो है हमारा KW स्पॉटलाइट, इट्स ऑन वन ऑफ द इवेंट जो के अपना जो अपना आने जा रहा है संडे मे 18 को फ्रॉम द ऑल स्पोर्ट्स अल्बर्टा फाउंडेशन। मोहन भाई क्या हो रहा है संडे मे 18 को? लॉन्ग वीकेंड मंडे, मंडे लॉन्ग वीकेंड,
0: मंडे लॉन्ग वीकेंड,
1: सॉरी माय फॉल्ट।
0: तो ये मैं खाली रुबाब ज्यादा बेहतर बताएंगे, ये डायरेक्ट

0: Oh, she's the boss.
1: She's the boss. She's always the boss.
0: Of course.
2: I'll take it. जब कोई अच्छी चीज मिले ना उसको लूज नहीं करना चाहिए.
0: बिल्कुल बिल्कुल यस.
2: तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हम लोग पिछले 4 साल ये हमारा 14 साल होगा और एनुअल प्रोग्राम है और माशाल्लाह से बहुत हिट रहा है. बहुत लोगों को मतलब पसंद किया गया. जब हमने फर्स्ट ईयर जब लॉन्च किया था तो हम लोग थोड़ा सा डरे हुए थे क्योंकि ये हमारे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि हम डील कर रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव एरिया पे हम काम करने की कोशिश कर रहे थे. तो हम लोग थोड़ा डरे हुए थे कि पता नहीं हाँ कि कैसे कर पाएंगे क्योंकि हमने कभी हैंडल नहीं किया विद ऑल एबिलिटीज फैमिलीज के साथ ना. लेकिन हमने कोविड में हमने थोड़ी सी हमने वो की थी, सर्च किया था और लोगों से हमने इंक्वायरी की थी कि आपको किस तरह के प्रोग्राम चाहिए, किस तरह के इवेंट्स चाहिए. तो अब इतने सारे जो बच्चे हैं जिनके पास डिफरेंट एबिलिटीज हैं, आप उनको सबको एक्यूमिडेट नहीं कर पा रहे थे. मतलब किसी कोई ऑटिस्टिक है या किसी को डाउन सिंड्रोम है या ब्लाइंडनेस का है या कुछ भी है, तो आप उनके लिए कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स को लाकर उनको खिलाना बहुत ही चैलेंज लग रहा था. तो लकीली एक ये आइडिया है कि हम कोई ऐसा इवेंट करते हैं जो फ्रेंडली हो और फन इवेंट हो. और ये आइडिया नहीं का है, पाशा का है. तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं जिसमें हमें इनको ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल एक कोई जबरदस्त हॉकी प्लेयर बन जाए या कोई बास्केटबॉल प्लेयर बन जाए. लेट्स जस्ट पुट स्टॉल एंड लेट देम टू प्ले बाय देमसेल्फ विद देयर फैमिलीज, लेट देम टू एंजॉय, बिकॉज उनकी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से उनको जानती है और वो उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है. तो हमने फर्स्ट ईयर किया और बहुत सक्सेसफुल रहा. उस वक्त हम लोगों को ये चैलेंज फेस कर रहे थे कि जो हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं और जिनके फैमिलीज में कोई है ऑल एबिलिटीज के कोई भी फैमिली मेंबर, वो इसको हाइड करते थे और मतलब नहीं चाहते थे लोगों को पता चले. तो उस टाइम पे ये चैलेंजेस फेस कर रहे थे. लेकिन जो फैमिलीज उसमें शामिल हुई, जैसे कि अब मैं कहूंगी जब हमारा पहला इवेंट हुआ था आई थिंक 25 फैमिलीज थी. तो वो हाँ वो जो फैमिली शामिल हुई उनको देख के दूसरे लोग भी उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आई कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई ऐसी चीज दी है जिसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको छुपाया जाए. इट्स समथिंग यू आर डूइंग समथिंग वेरी रिवॉर्डिंग कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है कि वो एक काम करने के लिए, किसका मतलब आपके अंदर वो सलाहियत है और ये कोई ऐसी चीज है जिस पे आपको प्राउड होना चाहिए, बजाय कि मतलब आप लोगों से छुपाएं कि किसी को पता ना चल जाए कि मेरे बच्चे में ये है या मेरी फैमिली मेंबर में ये है. अभी माशाल्लाह अभी हमने इतनी प्रमोशन स्टार्ट भी नहीं की और अभी हमारे पास ओवर 44 फैमिलीज रजिस्टर कर चुकी
0: हैं. तो यू नो आई थिंक जो हम बैक होम था ऑफकोर्स वो हमारे कल्चर यही था, कुछ वो तो हम किसी को बताए नहीं. लेकिन यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट आपको खुद ही वो इनकरेज करती कुछ है, तो अब यू रीच आउट जो है रीच टू अस और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आपकी, सो देन दे कैन हैव जो एवरीवन कैन हैव देयर ओन टाइम जो आप लोग करें. माशाल्लाह आई थिंक दिस इज सो ग्रेट टू सी कि आप जो है हैंडीकैप किड्स के लिए आई थिंक बेसिकली वो है और या तो अपना जैसे आपने कहा कि अलग अलग जिसमें कुछ
2: हर एबिलिटीज के, इसमें हर कोई मतलब आ सकता है. कोई भी स्पेशल कोई भी चीज है, कोई भी फैमिली मेंबर है. इसमें बच्चे सिर्फ शामिल नहीं है, एडल्ट भी हैं. अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई भी है जो ऑल एबिलिटीज के का कोई भी बंदा है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं. फ्री इवेंट है, पूरी फैमिली आ सकती है. बस लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना
0: जरूरी है. मंडे में 18 जो लॉन्गियन मंडे है दोपहर को 12 से 3 बजे तक जेनेसिस सेंटर की फील्ड नंबर 1 में, तो ये कहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं?
2: ये इसमें पोस्टर पे हमारा नंबर भी लिखा हुआ है, वैसे मैं वैसे भी बता देती हूँ, 403-462-6201 पे कांटेक्ट कर लें. और पोस्टर पे हमारा ईमेल एड्रेस भी है, तो वो अगर हमें कांटेक्ट करेंगे हम इनको एक ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे. हमारा व्हाट्सएप का एक फैमिली का ग्रुप है स्पेशली इस इवेंट के लिए, और उस ग्रुप में सिर्फ यही वही फैमिलीज है, ऑल एबिलिटीज की फैमिलीज हैं जो पिछले 4 साल से पार्टिसिपेट कर रही हैं और जो और भी नहीं आएंगी.
0: nice.
2: तो हम उनको उस ग्रुप में ऐड करते हैं और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम उनको शेयर करेंगे, फिर वो रजिस्टर करें और फिर अपना नाम लिखें.
0: आई थिंक इट्स वेरी जो है बड़ा जो ऑर्गेनाइज लग रहा है. तो वहाँ पे क्या क्या गेम्स होती है उनके लिए, क्या लाइक व्हाट डू दे डू?
2: तो जिस तरह का जैसे जेनेसिस सेंटर का जो फील्ड 1 है वहाँ पर हम हमारा ये है कि हम डिफरेंट स्टॉल लगाएंगे, स्टेशन लगाएंगे. लेकिन एक स्टेशन क्रिकेट का हो गया, उसके थोड़ी देर बाद सॉकर का हो गया, उसके बाद बास्केटबॉल, फिर टेबल टेनिस. लेकिन इसमें सिर्फ हमने स्पोर्ट्स नहीं रखा, इसमें फन एलिमेंट भी ऐड किया है. इन द सेंस कि अगर कोई हर बच्चे की हर फैमिली की डिफरेंट

0: करें आई थिंक इट्स अ ह्यूज ह्यूज टास्क टू हैंडल दोस किड्स आई नो इट्स नॉट इजी बट जो है कुडोस टू यू एंड योर टीम इट्स अमेजिंग यू गाइस आर डूइंग इट तो रजिस्टर कहां पर करवा सकते हैं एक बार फिर से
1: रजिस्टर के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं फोन नंबर मैं बता देती हूँ 403-462-6201 आप कांटेक्ट करें आपको हम कनेक्ट कर देंगे अपने ग्रुप से और फिर वहां से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा
0: ठीक आशी यू नो आपने ये जो वॉइस ग्रुप बना है आते उसका फायदा भी है कि एक को फिर वो लोग कंफर्टेबल हो जाते
1: हैं कंफर्टेबल हो जाते हैं बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा लगे मैंने एक ड्रास्ट चेंज देखा तीन से चार साल पहले और अब मैं लाइक अब बहुत इजी हो गया है कि मतलब आपने जैसे रजिस्ट्रेशन खोली और लोगों ने सेकंड डे ही हमारे फर्स्ट डे हमारे पास 33 फैमिलीज थे फैमिलीज का मतलब है लाइक हर फैमिली में कम से कम चार पांच लोग होंगे राइट सो इट्स अ ह्यूज सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह
0: I think this is great. Or it's at the Genesis Center Field 1, दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक कोई वहाँ स्नैक्स वगैरह होंगे बच्चों के लिए
1: जी बिल्कुल होंगी और थैंक्स टू ऑल द स्पॉन्सर जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है और मैं उनका भी नाम ले लेती हूँ
0: गो फॉर इट
1: हमारे जो हमेशा हमें जो स्पॉन्सर करते हैं रियल्टर हैं जूदी शेख वो हैं उन्होंने किया स्पॉन्सर हमारी एक बहुत प्यारी ऑर्गेनाइजेशन है जलमी कैनेडियन जलमी सोसाइटी वो हमें बहुत सारी चीजों में कोलैबोरेट कर रहे हैं और बहुत से डिफरेंट और हमारे इवेंट्स में भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसमें भी हमें उन्होंने स्पॉन्सर किया है इसी तरह इस दफा पहली दफा हम लोगों को स्पॉन्सरशिप मिली है इस्लामिक रिलीफ से भी कैनेडा से स्पेशली फॉर दिस इवेंट के लिए और हमारे साथ जो और भी हैं मोहसिन हैं वो हमारे साथ एज अ कोलैबोरेशन में होंगे
0: जी
1: एमडीआई ने भी हमें सपोर्ट किया है इस प्रोग्राम के लिए एक और एक है हमारे नॉरिन समोसे वाले उनके समोसे बहुत मजे के होते हैं उन्होंने लास्ट ईयर भी किया था इस साल भी किया है इस साल तो उन्होंने तो 100% जो समोसे जो भी होंगे वो उनके तरफ से हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने हमें बुलाया मौका दिया कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके तो आपका भी पोस्टर पे है नाम है थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस
0: Yeah. और ये जो शो होगा जो इवेंट होगा इज फॉर द होल फैमिली जो अपना जिन्होंने अच्छा ये एक और क्वेश्चन जिन्होंने रजिस्टर करवाया वो आ सकते हैं कि बाकी और भी आ सकते हैं ऑडियंस
1: देखिए हमारे तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि जो रजिस्टर है ना वो आए क्योंकि हम उनको वेवर दे रहे हैं फील करने के लिए और हमारे पास नंबर भी होने चाहिए ना कितने हम मेंबर्स आ रहे हैं हम उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें जैसे कि हमें अब हमें पता है कि अराउंड हमारे पास 200 पीपल होंगे राइट तो हमने उसके हिसाब से फूड ऑर्डर करना है ठीक है उसके हिसाब से हमारी सारी चीजें चलेंगी उसके हिसाब से हमारे वॉलंटियर्स होंगे राइट तो अगर हमारे पास नंबर नहीं होगा तो हम चीजों को उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे और हैंडल भी नहीं कर पाएंगे तो रजिस्ट्रेशन
2: हाँ तो ये तो स्पेशल किट्स का हमारा सबसे समझ लें जो वैसे तो सारे वॉलंटियर बड़ा दिल लगा के काम करते हैं हर इवेंट में हर प्रोग्राम में लेकिन ये खास इवेंट है होता है हमारे लिए साल में जो एक दफा करते हैं इसको बाकी काफी लोग जैसे मैंने कहा ना जब वॉलंटियर के लिए हम रिक्रूटिंग करते हैं तो उसमें फौरन ही हमें इतने मिल जाते हैं हमें कोई परेशानी नहीं होती वरना नॉर्मली जो है वॉलंटियर्स आपको मुश्किल से मिलते हैं
0: जी, जी, जी.
2: तो ये इसमें हर किसी का इसमें हिस्सा है और हर कोई बड़े दिल से करते हैं सारे वॉलंटियर्स इसमें काम और सबको दिली खुशी होती है क्योंकि एक तरह से ये काम जो है वो सवाब का काम है मैं समझता हूँ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से हम तो कुछ भी नहीं कर सकते बिल्कुल तो ये एक तो ये है दूसरा मैं उसके असाफ के हवाले से कहूंगा कि हमारे जितने भी क्लब्स हैं अभी जैसे कैनेडियन जलमी सोसाइटी की बात की उनके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं बहुत से यूथ के इवेंट्स में और सीनियर के इवेंट्स में अभी हमने सीनियर्स का एक इवेंट किया था जिसमें जलमी सोसाइटी के कोलैबोरेशन से हम मूवी पे लेके गए थे
0: Oh, that's nice.
2: कोई 70 सीनियर्स थे
0: oh, wow.
2: जो हमने उनको

0: क्लियर वन बैडमिंटन है नॉर्थ ईस्ट में बिटवीन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट. तो वहाँ पर एडल्ट के भी होते हैं उनका तो पेड है, लेकिन जो किड्स का जो सेशन है वो हर वीक होता है हमारा. लेडीज के दो सेशन होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको सिर्फ वहाँ पर आना है और खेलना है. वरना तो हमारी कोशिश यही होती है कि लोग बहुत से फाइनेंस की वजह से और नहीं आ पाते, तो एक इनकरेजमेंट उसमें तो इस तरह के हमारे बच्चों का सॉकर का भी सीजन हमारा शुरू होने वाला है. बहुत पॉपुलर है अभी, फीफा का वर्ल्ड कप भी है और आपका भी, आप जैसे बताते
1: हैं फीफा का,
0: तो वो तो ये सारे जो हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, बास्केटबॉल का है, बैडमिंटन है, हमारा मार्शल आर्ट का बच्चों को होता है ऑल ईयर राउंड द ईयर हम करते हैं वो फ्री सेशंस, वो भी हम रखते हैं. तो अगर किसी भी इसमें आपको अपने बच्चों के हवाले से, लेडीज के हवाले से, सीनियर्स के हवाले से कोई भी आपको अगर आप इंगेज होना चाहें और हमारी रिक्वेस्ट है तो कॉन्टेक्ट, प्लीज कॉन्टेक्ट करें. वेबसाइट है, फेसबुक पेज है हमारा, उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ शामिल हों, ताकि इन हेल्दी एक्टिविटीज में कम्युनिटी के साथ आप वो साथ रहेंगे तो सब मिलके ये एक एज ए होल जो है पूरी कम्युनिटी का फायदा होगा.
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो है पूरी कम्युनिटी का फायदा होगा, ऑफ कोर्स, नो डाउट.
2: जी पर किसी भी हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी को भी चाहिए कि किसी आपको अगर लेडीज के इवेंट्स के लिए चाहिए या फिर स्पोर्ट्स के किसी यूथ के लिए चाहिए या सीनियर्स के लिए, सेम ईमेल एड्रेस है info@allsportsalberta.ca, उस पर आप ईमेल करें, आपको आंसर मिल जाएगा और आप कनेक्ट हो जाएंगे. और दूसरा ये भी कि अगर हमारी कम्युनिटी में कोई भी वॉलंटियर करना चाहता है यूथ, प्लीज कम एंड हेल्प अस, बिकॉज ये उनके लिए भी हेल्पफुल है और हमारे लिए भी हेल्पफुल है.
1: बिकॉज़ वॉलंटियर्स आर ऑलवेज नेवर इनफ, जितना हो तो ज्यादा है.
2: और इस स्पेशली इस इवेंट के लिए जो मई 18 को होने वाला है 12 से 3 बजे तक, और इसमें जैसे इन्होंने बताया कि 50 वॉलंटियर्स हैं, ये वो वॉलंटियर्स हैं जो कि मतलब सेल्फलेस होके आके काम कर रहे होते हैं. इसमें मोस्टली यूथ शामिल हैं. लेकिन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में जो मेन जो है, मैं उनका नाम बता देती हूँ. ये तो मोहम्मद पाशा तो है ही है जिनको मतलब इनके सारे आइडियाज आ रहे होते हैं चीजें. मैं ओवरसीज कर रही होती हूँ और नादिया जफर यूसुफी हैं जो कि मैनेजर हैं, वो सारी कोऑर्डिनेशन कर रही होती है, आउटरीच कर रही होती हैं और वॉलंटियर्स को भी देख रही होती हैं. इसी साल हमारी एक नई मेंबर शामिल हुई है मोना, वो हमारे वॉलंटियर कोऑर्डिनेशन का देख रही है और सारे फैमिलीज की कोऑर्डिनेशन का. हमारे एक और एक बहुत प्यारे से भाई हैं हसीब, वो हमें हेल्प कर रहे होते हैं और वो हमें फर्स्ट टाइम से ही हेल्प कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें बहुत गाइड किया है कि अगर हम इस एरिया पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें किस किस चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए.
1: मंडे मई 18 12 से 3 बजे जेनेसिस सेंटर फील्ड 1, इंशाल्लाह एवरीवन विल बी देयर एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर टीम.
2: थैंक यू,
1: थैंक्स फॉर डूइंग दिस. आई थिंक वी नीड इट. आई थिंक होपफुली यहाँ से यू नो यू लाइक यू गाइस जस्ट गेट बिगर एंड बेटर
2: इंशाल्लाह.
1: आई थिंक हमारे जो है कमेंट में बहुत से लोग हैं जो अभी भी शर्माते हैं बाहर निकलने के लिए या बताने के लिए. नहीं, यहाँ पे कोई शर्म नहीं है, यहाँ पे तो हर बल्कि इंकरेजमेंट मिलती है और सब फैसिलिटी भी है यहाँ पे कि यू कैन एंजॉय विद योर किड्स और एडल्ट हो किड हो जो भी हो. थैंक यू सो मच,
2: बहुत शुक्रिया
0: आपका. शुक्रिया, जब भी हम आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं आप हमें कभी ना, तो खैर दूर की बात है, आप हमें फौरन ही प्रॉम्प्टली इसका वो करते हैं. तो
1: आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा, मैं कहाँ भागूंगा.
2: सही बात है.
0: नहीं, अलहमदुलिल्लाह आपका प्रोग्राम जो है माशाल्लाह देखते हैं, बड़ा बड़ा अच्छा शो आपका और जो आपने इसको एक न्यू फेस दिया है,
1: रीब्रांड के थोड़ा किया
0: है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सारा, जिसमें पाकिस्तानी ड्रामों का भी आप वो कर रहे हैं.
1: यस, तो अभी जो ड्रामे का भी आप जो हमारे दो हफ्ते में आने वाला है, नेक्स्ट वीक भी हमारे पास आपकी स्पॉटलाइट की तरह एक होगा जिसमें एक इवेंट होने जा रहा है, तो वो स्पॉटलाइट में होगा जो आई थिंक इस तरह एक तरह का वो जो कहते हैं ना कि अगर आप थोड़ा नाम चेंज करें थोड़ा अलग करें तो लोग उसका अट्रैक्शन बढ़ जाती है. तो ऊपर वाले की दुआ है अभी तक, स्पेशल ड्रामा का इट वाज रियली रियली गुड शो. अगर आपको मौका मिला आप जरूर देखना. हमें कमेंट्स भी आ रहे थे, बाकी जो है आप सलमान जी और अंसार जी भी खुद की पूरी इनकी जो एक्सपर्टीज थी ड्रामे की तो वो खुद ही शेयर कर रही थी. और इस बार हमारे पास एक और गेस्ट भी होंगे फ्रॉम ऑडियंस, तो आई थिंक इट्स नाइस कि जो ऑडियंस को भी हम इन्वॉल्व करें हमारे साथ. और बस हम आप मेहनत करते हैं,
0: ट्राई करते हैं और हम देखते हैं इसको और सपोर्ट करते हैं.
1: थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये है आपको जो है कॉफी जलाल ऑन रेडियो स्टेशन 94.7 एफएम. तो विल टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद जो है आई विल बी राइट बैक और फिर हम जो है हमारे दूसरे गेस्ट से बात करेंगे. तो आपने जाना कहीं नहीं है, कीप लिसनिंग टू कॉफी जलाल ऑन रेडियो स्टेशन 94.7 एफएम. तो लेते हैं एक छोटा सी ब्रेक.

0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community, anytime, anywhere.
1: 94.7 FM Radio Sursangam. Har hafte weekend te suno. Monday to Friday. Sham 4 to 5. Kuldeep Singh Vichar Charcha. Sham 8 to 9. Jitendar Pannu. RadioSursangam.ca. Phone 403-585-0910. Radio Sursangam.
2: अल्बर्टा के साथ कनाडा में खसरा के फैलने का सिलसिला बढ़ रहा है। खसरा एक बहुत ही मुतादी बीमारी है, लेकिन इसे वैक्सीन से रोका जा सकता है। वक्त पर वैक्सीन लेकर अपने खानदान और कम्युनिटी को महफूज रखें। खसरा रोकिए, टीका लगवाइए। alberta.ca/measles पर जाकर जानें क्या आप महफूज हैं। अगर नहीं तो आगे क्या करना है। अल्बर्टा हुकूमत का एक पैगाम।
1: पंजाब तो प्रसिद्ध पत्रकार जितेंद्र पन्नू जी नूं सोमवार तो शुक्रवार रेडियो सुरसंगम 94.7 एफएम ते सुनो हफ्ते दे वी घंटे रेडियो सुरसंगम radiosursangam.ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
3: The following program speaks to the South Asian community uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio the multicultural spirit of Calgary CHKF 94.7 FM

0: ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ।
1: ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਐਲਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-617-1868।
0: ਜੇਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ mandeep.realtor।
1: ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਰਿਐਲਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 403-617-1868।
2: फ्लाइट बहुत लेट हो गई, खान ले बर्गर ले लिए।
3: ना जी, अप्पा ते गर्मा गर्म रोटी खावांगे।
2: माले नखरे ना करो, मेथो रात दे 3 बजे रोटियां नहीं पकदियां।
3: ओहो, तो हानू नहीं कष्ट देना, अप्पा चलना है समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, जो 24 घंटे खुले होंदे ने।
2: समोसा हाउस इंडियन कुजीन, ब्रेकफास्ट विच गर्मा गर्म परौठे, लंच एंड डिनर विच पूरियां, छोले भटूरे, फिश टिक्का, चाइनीज इंडियन फूड, हर प्रकार दी मिठाइयां अते केटरिंग भी करदे ने। इंडियन कॉफी अते कुल्लर स्पेशल चाह भी इन्हां कोलों मिलदी है। हर प्रकार दे खाने वाली शानदार रेस्टोरेंट समोसा हाउस इंडियन कुजीन एंड स्वीट्स, ओपन 24 आवर्स, यूनिट 2154-43-10104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कॉल 403-400-CART-CART-CART 403-461-6161।
4: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान, ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंद दी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम। अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुज्जो, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
0: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा, कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
1: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
0: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां, हफ्ते दे 7 दिन, सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंड ड्राइव,
0: दूजी लोकेशन 117-7770 80 एवेन्यू,
1: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड,
0: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप स्क्वेयर,
1: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
0: छेवी लोकेशन 400-45 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
0: 403-835-2222। नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका, जिथे बनाए जा सकदे ने 10 टाउन हाउस। एना ही नहीं, एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने। बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका, फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन। वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-1111 ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते। बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है।
1: रेडियो सरसंगम 94.7 FM सुन रहे सारे श्रोतियां नूं कुलदीप सिंह वल्लों सति श्री अकाल जी। अज दिन वीरवार मई महीने की 7 तरीक सन 2026 हुण तो लैके 6 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ रहेगा। साढ़े अज के बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दे विच 8 बजे एक विशेष गलबात राजनीतिक समीख्याकार मनदीप सिंह मन्ना होरां दे नाल एक लंबी चौड़ी इंटरव्यू 8 बजे पेश कीती जाएगी। इस तों बाद 9 बजे पंजाब तों जतिंदर पन्नू जी नाल गलबात पेश करांगे। इह साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उहनां दा वेरवा। अज दे इस प्रोग्राम विच खबरां ते चर्चा करांगे ते नाल असीं जो कैलगरी विच नगर कीर्तन सजाए जा रहे ने 9 मई नूं उस ते एक विशेष गलबात गुरद्वारा साहब दशमेश कल्चर सेंटर दे प्रबंधकां नाल, जिस विच

0: 19th Street, Northeast Calgary, Calgary Carpet Empire. Phone number 403-510-1515. 2935 19th Street, Northeast Calgary.
1: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
2: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
1: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
2: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव
2: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू
1: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड
2: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप स्क्वायर
1: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
2: छठी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
1: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
2: 403-835 बाय-बाय नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदन दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस एना ही नहीं एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाईया जा सकदियां ने बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नु 403-617-2111 ते अमन गिल नु भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है
1: ब्रेक तो बाद फिर स्वागत है जी ते आओ प्रोग्राम नो अगे तोड़दे हां लेकिन उस तो पहला स्पोंसरां बारे जानकारी दे दईए कि सोनिक इंश्योरेंस ते मानस पहुजा होरां दे सहयोग नाल प्रोग्राम आप जी तक पहुंच रहा है सोनिक इंश्योरेंस ते मानस पहुजा होरां दा कहना है कि अल्बर्टा विच असीं तुहानूं ट्रकां दी इंश्योरेंस ते बेस्ट रेट देवांगे मानस होरां दा नंबर है जी 587-832-1208 587-832-1208 सोनिक इंश्योरेंस ते मानस पहुजा मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे विच है कनेडा की सब तो बड़ी डीलरशिप इत्थे जाके तुसी वधिया डील बनाना चाहते हो तो गौरव शर्मा होरां नाल कॉन्टैक्ट कर लो फोन नंबर 403-903-7657 403-903-6757 पंजाब इंश्योरेंस ते हरपिंदर सिद्धू ते लवप्रीत सिद्धू जो कि लाइफ इंश्योरेंस ते सुपरविजा इंश्योरेंस करते हैं तुसी अगर ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 403-404-3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ 403-404-3500 YYC ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 825-760-983 8257-600-9983 समोसा हाउस इंडियन रेस्टोरेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे विच समोसा हाउस जिथों तुसीं ऑर्डर करके खा सकते हो जां जा के लिया सकते हो किसी भी वेले जां बैठ के खा सकते हो समोसा हाउस इंडियन रेस्टोरेंट जो कि देसी घ्यो विच दालां सब्जियां बनाउंदे ने ते 24 घंटे खुले रहिंदे ने फोन नंबर 403-400-6666 इन्हां वल्लों मदर इंडिया रेस्टोरेंट की शुरुआत भी की जा रही है ओह इस बारे भी जानकारी देवांगे पिक्सल फोटो स्टूडियो सवाना बाजार दे विच है जिथों $7 दे विच दो पासपोर्ट फोटो फैमिली फोटो बेबी फोटो तुसी करवा सकते हो पिक्सल फोटो स्टूडियो फोन नंबर 403-947-0060 403-947-0060 ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਖਬਰਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ CCS ਵੱਲੋਂ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CCS ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ

0: इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है ते ओता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको पर शर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उन्हां नूं फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 Sonic Insurance.
1: The time is 6 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.